ये खबरें NHK World जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के एक मिशन का कहना है कि ये यकीन करने की माकूल वजूहात मौजूद हैं कि अमरीका ने कबलज़ी रवां साल जनूबी ईरान के एक स्कूल पर मोहलिक मिज़ाइल हमला करके जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। ईरान से